सुख पर हस कल जाए, गुरुमुख नादन गुरुमुख वेदन गुरुमुख राय समाये, गुरु ईश्वर गुरु गोरख परमा गुरु परपति माए, जय हाँ जान हाख नाहे कह ना कतन ना जाए, गुरु एक ते बजाए सबना जिया का एक ताता, समय विसर न जाए, तेरत नाव जेठ सपाव बिन पाने के नरी करी, जेठ सुरत पाए वेका सिरत पाए वेका, बिन कर्म के मला लाए माट विच रतन जवाहर माणिक, जेक गुर की सुख सुने गुर एक ते बजाए, सबना जिया का एक ताता, समय विसर न जाए,

के कीट अंदर कीट कर तो शीतोस्तरे नानक निर्गुण गुण करे कन्नवंतिया गंदे तेहा को न सचे चेचिस कुन खोए करे सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिया तरत बाल खास सुनिए दीपलवा पाता सुनिए पोइना सके का नानक भगता सराबगा सुनिए दुख पाप खनास सुनिए ईश्वर पम इंद सुनिया मुक्सला हनुमंद सुनिया जोग जग तन पेद सुनिया सास सिमृत वेद नानक भगता सराबगा सुनिए दुख पाप खनास सुनिया सत्संत ज्ञान सुनिए असत का इश्नान सुनिए पढ़ पापा वे मान सुनिया लागे सहज ध्यान नानक भगत सरा विकास सुनिए दुख पाप खनास सुनिए सरा गुना के कह सुनिए सिख पीर पाचा

पलक चाणा है लिख लिख तारम विचारे कावे ईश्वर ब्रह्म देवी सोहन सदा सवारे गावे इंदन दासन बेटे देवती अर्थ नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गवन सद विचारे गावन जति सति संतो के कावे वीर खरारे गावन पंडित पढ़न रखी सर चुग चुग वेदा नाले गावे मोहन अमन मोहन स्वर्ग मच पायाले गवन तन पाए तेरे असट तीर्थ नाले गावे चर महाबर सुर गावे खानी चारे गावे खंड मंडल वृपंड ककर के तारे सी तुन गावे चोचर पावन रत तेरे भगत प्रसाले होर कीते गावन से मैं चितन आवन नानक विचारे सोई सोई सदा सच साहेब सच सची नाई है भी होसी जैन जासी रचन जन रचाई रंगी रंगी पाठी कख जैसी माया जन उपाय कख वेख कित आपना जिव तस दी वड्याई जो तस पावे सोई करसी हुक्म न करना जाए सो पात साहो सह पात साहेबा नानक रण रचाए मंद संतोख सरम पात चोगे त्यान की करे प्रभूत किंत काकुआरी करिय जगतंदर पठित आई पंथी सग जमाते मंजी ते जग जीत अदेस्त से अदेस आर नील नार नाह जग जगे को वेस भगत के अंदरी अम्बंटारन कट कट पाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाके रिद सर आवर साद संजोग विजोग ते खर्च लावे हे लेके आवे पाग अदेस्त से अदेस आद अनिल अनार अनाह जग जग एक वेस एक माई जगत भी आई तिन चले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाई दीपान जिव तिस पावे तिवे चलावे जिव होवे फरमान ओ वेक अनर न आवे बहुता एओ वरदान अदेस तिसे अदेस आद नील नार नाह चुग चुग एक वेस आसन लोए लोए पंडार जो किच पाय सो एक वार कर कर वेक सिर जनहार नानक सचे की सच्ची कार आदेश से आदेश आद नील नार नाह चुग चुग एक वेस एक जीव जी बालक होए रख होवे रखवीस लक लक केर आख्या है एक नाम जगदीश एत रहे पट पवड़िया छुड़िए होया खीस सुनकला का सखी कीट आई रीस नानक नरी पाया कोड़े कोड़े ठीक।

ना सरते ज्ञान विचार जो न जगति शिपते संसार जह सहत जोर कर वे के सोए नानक उत्तम नीच न कोए रत रति थिति वा पावन पानी अग्नि पाता तिस विच तर जी था प्रखी तरम सा तिस विच जिय जगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत कर्मे कर्मे हुए विचार सच्चा अप सच्चा तर पार थिते सोहन पंच परवान नररी करम पवे निशान कच पकाए अते पाए नानक कहया चापे चाए तरम खंड का ए हो तरम ज्ञान खंड का आखो खरम केते पवन पुनी वे संतर केते कान महेश केते पन में करत करिया है रूप रंग के वेश केते करम भूमि मेर केते केते तूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिर बुर नाथ केते केते देवी वेश केते देवता नव मन केते केते रटन समुद केते खाने केते बाणे केते पद नरेंद्र केते सृति सेवक केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड मह गिना प्रचंड तिते नारब नोर खोद आनंद सरम खंड की बाणी रूप तिते करत करिया बहुत अनूप ताकिया कला कतिया न जाए जेको कहे पिछे पिछताए तिते करिय सुरत मत मन बुद तिते करिय सर सदा की सद खरम खंड की बाणी जोर तिते हो न कोई जोर और तिते जर महाबल सूर तिन में राम रहिया परपूर तिते सीता सीता में माहे ताके रूप न कत न जाहे न ओहे मर न टागे जाहे जिनके राम वसे मन माहे तिते पगित से खेलो अखरे आनंद सच्चा मन सोए सच खंड विसे निरंकार खर खर वे के नर नहा तिते खंड मंडल पर पंड चेक किते था अंत न अंत तिते लोआ लोआ आकार जिव जिव हुकम तिवे तिव कार देखे विगसे कर विचार नानक कतन कटा सार जत पर अति रज सन्यार अरण मत वेद हत्या पोकला अगंतप्ताओ पंड बामर तत तटाल करिय शब्द सचित कसाल जिनका नर करम छिनखार नानक नररी नर नाल श्लोक पवन गुरु पाणी पिता मत तरत महत दिवस रात जय जाय जय अखेला सकला जगत

हर चाहत कछ और ओरे की ओरे पई चितवत रहियो ठगोर नानक फासी गल परी जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो न कोई कहो नानक सुन रे मना हर पावे सो हुई जगत पिकार।

गर्व करत है देखो भिनसै छिन में मीत। जह प्राणी हर जस कहियो नानक ते जगजीत। जय घट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान। तै नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जय प्राणी के नाहे मन। जैसे सुकर सुआन नानक मानो ताए तन। स्वामी को गृह जियो सदा सुआन तजत नहीं नित। नानक एविद हर पजो एक मन हुए एक चित। तीर्थ बरतर दान कर मन में तरे गुमान। नानक निफल जात ते जियो कुंचर स्नान। सिर कंपियो पग तगमगे नैन जोत ते हीन। को नानक है बिद पई तो न हर रसलीन। नेज कर देखियो जगत में को काहू को नाई। नानक तेर हर भगत है तेरा को मन माई। जग रचना सब जूत है जान ले रे मीत। कह नानक

रहियो साधु रहियो रहियो गुरु गोबिंद कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरमंत राम नाम उर मैं गहियो जाके सम नहीं कोई जय समरत

ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बिरंगन संग अलापे आठो नंदन प्रथम राग बैरो वह करही पंच रागनी संग उचरही।

पंचम हरकत साख सुनावे, बंगालम मद माधव गावे, ललत बिलाव लगाव ही अपनी अपनी पांत, अष्टपुत्र।

अष्ट माल को सक संग लाई, पुन आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सुत, उठे तान कलोल गायन तार मिलाव ही, ते लंगी देव करी आई, बसंती संदूर सुहाई, सरस हीरी ले पार जा, संग लाई पांचो आर जा, सुरमानंद पास कर आए, चंद्र बिंब मंगलन सुहाई, सरस बाण ओ आई बिनोदा, गावे सरस बसंत कमोदा, अष्ट पुत्र मैं कहे सवारी, पुन आई दीपक की बारी, कछे

जबली धरनत ओ जलदारा, गुण गावे शंकर ओ सियामा, मेघ राग पूत्रण के नामा, कष्ट रागुण गाए संग रागनी तीस, सबे पुत्र

0: सबे पुत्र रागणंके अठारह दस बीस वाहेगुरु जी का खालसा
1: वाहेगुरु जी की फतेह।